दे मालंग चकी दे दड़ दिल तंग चकी दे दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सुना सुना आवरी शौफा अमल जन तू आए ची मुंग था हाजरी उलग गई और राशि प्रोग्राम था आक वीनो मुंग ते दी मैसेज चुकी आके जी गुलाली डेरी साथ मने ने डेरी साथ शुक्रिया और चिकम दे सुमरोम सुमंगवरी धुन की दी अगर रातली शिमुख सिर्फ सिफर 345 सॉरी जी सिफर 335 435 15 बांदी आओ बिल्कुल शो अवल लग टाइम की रिकॉर्डिंग वा हो रहे और उस चिकम दे शो बिल्कुल लाइव बराए रास था तो तासो शो तम मैसेज को लेशी शो तरात लेशी लेक सुन जा कलक कल राशी कना गोरा मुंग में इंसाना न्यू कना दो मुंग सरम दाग लगी लगी मसले राजी मतलब बिजली मसला राशि या नूर से दासी दस वजह से मसला राशि नो आगे के बमुंग खबगान ने क्यों ठीक दे जी आगे मसले मुंह सरम राजी और आगे मसले तासरम राजी नो चिकम दे कल मसला राशि का ना नो पागे बखपा के गई तासुना उस मसले ठीक शुभ था उस तासु बिल्कुल जी रात लेशे प्रोग्राम था प्रोग्राम के मुख सर बरखा गिस्तले प्रोग्राम बिल्कुल जी लायो बराए रास

जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मौके चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म क्योंकि

करिश्मा स्टार या इकराम भाई सिंह अयूब दलंडी जलंधर ना अवतार में स्पेशल सलाम दे वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई सिंह खाई बराबर तबियत देखा दे शुक्र देखो नामा मुबारक देने दली कले इकराम भाई हर्बल आयल दे जिंदाबाद भी रशीद जमान से मैसेज डाली के लिए टांग सुकम जमा आवाज उरी के ना सदाम रमजान प्लाजा की जरबत खान जी सर जमाइश में तमाम प्रोडक्ट मिलावी की खान सलाम वालेकुम इकराम भाई जमाने मुस्कान दे रविल पिंडी नेमा इकराम भाई जब अवल जल सास शो की मैसेज कहूमा जान ला इश्मा ब्यूटी क्रीम नन रोल उम्मीद लरमा ची रिजल्ट बरा लखेस्तरा कई इनशाला जमा एज 19 साल इनशाला खेस्तर रिजल्ट बदर कई मसाज मकवा आओ सिर पे लेप कवा खा आओ वर्सरा इश्मा साबुन में इस्तेमाल हो ले साबुन हम दरे किस्मत इश्मा ब्यूटी साबुन 150 रुपए दे आओ इश्मा एक नी साबुन दे खारख के एलर्जी के दानों के गर्मकों के चा बदन बांधे सनोर सदा से मरजून दे अल्लाह दिन की स्किन प्रॉब्लम देखे जबरदस्त करके ओके चा मरजून निश्ता ओमदा सिम जमुंगा इश्मा एक नी साबुन यो नॉर्मल आम जिल्द स्किन वाला इंसान हम इस्तेमाल ले शी जरलेश बादर बाबाना वही लाला तासु सलाम कुमा वही भाई तासु घटू जी नको तो बचूड़े वाई यो खबर अदा दे छी बचूड़े चिकम दे कहना नो दस जमा अदत छवे दे बचे और बचूड़े दस जमा अदत छवे दे उमा लागा टाइम के कलर सख्त खानदार अजी चकल अगले जमाना सो मशरी मासर पदे ऑफिस के कार कई दफ्तर के कार कई आ फैक्ट्री के कार के मुंगी पीजनु बचपन में योजे तिरछे हुए माता पति चिदा इंसान माना मशक्कल कल बगे खत्म बचे हुए हम कहना नो बस ब्याह खुलरा टिंग कमा नो बदा बचूड़े बचे दस जमा अदत छवे दे आओ बाकी का सुख जमाने यो काल के शरान दियो कलस काल के पिंज काल के शरान दिनो बस दा टूल जमा बचूड़ी दी इकराम भाई सिंह प्रोग्राम दे।

0: मिली तरफ नहि
1: अगर संदर्भ रखो और वाज करे स्पेशल दीदी तो डाले कम औरत में दो चार गोल औरत में दो चार गोल
0: अच्छा औरत में दो चार गोल साजा गोर है सा
1: सही था सतीला हम के सोता मेरा जो प्राण था बल्ला हम जिन का ने मोहम्मद अरमानता और तिमुर मेवाल था बस नो तो दिमाग लगा हर या वो तो जमाना तरफ स्पेशल सलाम ना दो वक्त रखो ले जहान मनना
0: थैंक यू सो वेरी मच सैफुल्लाह उमर सरा जी यो जहान मनना درکیچ که سیفولا والا سلامونا درکیچ که سلیم کتی خیل زیب که آوز می بور بی دیر دیر سلامونا درکیچ که

गुरा पचल बंदे सेल्फी जोड़ो विमान सरा नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स से मिलावेशी जनाब मंसूर जन नसूर सदा मार्केट के हम मिलावेशी मुंगा मेन डिस्ट्रीब्यूटर तेजी और सरा मिलावेशी नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स का जहां पास होने से रहती जरबत खान इसे तखबर दिल शे सदर प्लाजा अफसर खान प्लाजा अलबदर मार्केट से हम मिलावेशी असगर जन नसूर सरा हम मिलावेशी सराय अल जान मरहूम के आसी असगर जन नसूर सरा मिलावेशी वीर शेखा अशिफा दवाहाना शवाल मार्केट आके हम मिलावेशी खान जी अल शिफा दवाहाना शवाल मार्केट

0: देता हुआ नूर, हर पल महके महसूस हो सुरूर,
1: चेहरे की रंगत अब और भी निखरे।
2: रोजाना 4 से 5 बराहे रास्त स्टे विद अस।

जी जनाब, ये तो हम हेल्थ प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे थे आप लोगों के साथ, और कैसे नेचुरल पाकिस्तान के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर जो है, जैसे कि कल मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था कि केसन के 7 किस्म के साबुन हैं। अगर अभी तक आपने केसन के साबुन नहीं इस्तेमाल किए, सर्दियों में तो इनको इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल से बने हुए हैं और आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको खुश्की बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका चेहरा सख्त नहीं होगा, आपकी स्किन फटेगी नहीं, आपकी स्किन जो है खराब नहीं होगी, बल्कि मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, और साथ साथ में आपकी स्किन नर्म मुलायम भी रहेगी अगर आप हमारे साबुन इस्तेमाल करते हैं। व्हाइटनिंग इफेक्ट रखते हैं सबके सब साबुन जो है हमारे, वो आपको व्हाइटनिंग देंगे, चाहे आप गोट मिल्क सोप हमारा इस्तेमाल करें, सोप नंबर 1 जिसको हम कहते हैं केसन गोट मिल्क सोप, मिल्की सोप, उसके बाद है हमारा केसन का सोप नंबर 2 जाफरानी साबुन, जो कि जाफरान संदल और हल्दी से बना हुआ है, रोजाना इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाएगी। सोप नंबर 3 हमारा गो पिंपल सोप है, जो कि नीम और टी ट्री से बना हुआ है। सोप नंबर 4 हमारा उपटन साबुन है, जो कि उपटन के खालिस अज्जा से बना हुआ है, जितने भी उपटन के अज्जा होते हैं उन सबसे मिलकर ये बना हुआ है। सोप नंबर 5 हमारा कोजिक एसिड सोप है, जो कि आपके छाइयों को खत्म करने के लिए मावन होता है, चुकंदर और कोजिक एसिड से बना हुआ है। सोप नंबर 6 हमारा ग्लूटा वाइट सोप है, जो कि ग्लूटाथियोन विटामिन सी और हेलेरोनिक एसिड से बना हुआ है, जो सांवले लोगों को गोरा करेगा। और सोप नंबर 7 हमारा राइस शाइन सोप है, जो कि शहद और चावल की अमेजिश से बना हुआ है। तो सर्दियों के लिए ये भी बहुत जबरदस्त हमारा साबुन है, कि ये भी आपको खुश्की नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर शहद है। ठीक है जनाब, शहद और चावल का इस्तेमाल किया गया है हमारे इस साबुन के अंदर। तो ये साबुन भाई आपके स्किन के रखवाले हैं, आपकी स्किन की हिफाजत करते हैं। और अगर इसी तरीके के साबुन आप खुद बनाना चाहते हैं और इन्हें बना के सेल करना चाहते हैं, तो आप केसन की सोप बेस हासिल कर सकते हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1/2 kg के अंदर, 1/2 kg के अंदर ये सोप बेस मिलेगी आपको, और आप अपनी मर्जी के 6-7 साबुन इससे बना सकते हैं। 750 रुपए की ये जो है एक सोप बेस आती है, तो बाजार से डेर इस्माइल खान में आपको हर जगह मिलेगी। टांक में अभी ये ट्रेंड नहीं है साबुन बना के सेल करने का, बेचने का, और केसन ने आपको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो डेर इस्माइल खान में आप अगर केसन शॉप अकबर प्लाजा में तशरीफ लाएं, तो यहाँ पर भी आपको सोप बेस मिल जाएगी। इशरत आर्ट प्लस कलाम बाजार के अंदर जो तेजाब वाले बैठे हैं, उनके पास सोप बेस बहुत ज्यादा हमारी जाती है, वहां से भी खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अमान आरसेरा, फारूक आरसेरा, शीश महल, फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है जनाब, ये सभी दुकानें जो है, या गुलशन कैश एंड कैरी, ठीक है जनाब, इसके अलावा A1 कॉस्मेटिक, इन सभी जगहों पर आपको केसन की सोप बेस मिलेगी। तो एक कुछ लोग होते हैं जो साबुन इस्तेमाल करते हैं और साबुन से चेहरा धोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सोप पसंद होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जमाना जदीद है और पैसे भी उनके पास अच्छे खासे होते हैं, तो वो अपने स्किन के रूटीन को मजीद बेहतर बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं फेस वॉशेस का। तो भाई जो लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि केसन कंपनी 7 किस्म के फेस वॉश बना रही है, 7 किस्म के साबुन बना रही है, तो ये सिर्फ साबुन बनाने वाली कंपनी है। नहीं भी, हम हर तरह के क्लाइंट का ख्याल रखते हैं, और मेरे ख्याल में कि जितनी बड़ी वैरायटी फेस वॉश की हमारे पास है, किसी और कंपनी के पास नहीं होगी। जिस तरीके से जितनी बड़ी वैरायटी साबुन की हमारे पास है, किसी और कंपनी के पास नहीं है। आप जो है प्रोग्राम सुनते होंगे हर जगह, तो किसी भी कंपनी के 7 किस्म के ब्यूटी और नरिशिंग असर रखने वाले साबुन किसी कंपनी के भी नहीं है। इसी तरीके से ये 4 वेरिएंट जो हम आपको फेस वॉश के प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल में कि किसी और के पास नहीं होंगे, जो केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास हैं। और हम उन लोगों का भी ख्याल करते हैं जो फेस वॉश को पसंद करते हैं इस्तेमाल करना, और एक नहीं, हमने आप लोगों के लिए 4 वेरिएंट बनाए हैं केसन फेस वॉश।

जी जनाब, किसी भी किस्म का आपका रंग है, गंदमी रंग है आपका, गोरा रंग है आपका, सांवला रंग है आपका, या फिर काला रंग है आपका, जिस भी कलर की आप क्या कहते हैं, जिस भी किस्म का कलर आपको अल्लाह ताला ने अता किया है, और उसके ऊपर अगर आप निखार लाना चाहते हैं तो भाई केसन के चार किस्म के फेस वॉश हैं, और हमने जो क्वालिटी चूज की है वो फॉर्मिंग फेस वॉश की है। दो तरह के फेस वॉश होते हैं, एक जेल टाइप फेस वॉश होता है और एक होता है फॉर्मिंग फेस वॉश, यानी कि जब आप फेस वॉश को खोलेंगे तो फेस वॉश जब निकलेगा तो वो या तो क्रीम की तरह निकलता है या फिर पानी की तरह, जेल की तरह ट्रांसपेरेंट निकलता है। तो वो मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ तरीके से फेस वॉश बनाती हैं, लेकिन जो टॉप क्वालिटी के फेस वॉश होते हैं वो फोमिंग फेस वॉश होते हैं, क्रीमी टेक्सचर के फेस वॉश होते हैं, और ये कदरे जेल टाइप फेस वॉश से महंगे होते हैं क्योंकि इनका असर और इनका इम्पैक्ट जो है बहुत ही जबरदस्त होता है। तो हमने आप लोगों के लिए चार तरह के फेस वॉश डिजाइन किए हैं। एक हमारा लवली फेस वॉश है जो कि स्पेशल फार्मूला फॉर वुमेन है, ठीक है जनाब, और ये स्पेशल फार्मूला खवातीन के लिए है और ये स्किन को प्यारा बनाने के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। दूसरा जो है हमारा गो पिंपल फेस वॉश है, गो पिंपल टी ट्री फेस वॉश है, केसन का टी ट्री फेस वॉश इस वक्त मार्केट का सबसे सस्ता फेस वॉश है, और एक्नी के लिए, दानों के लिए, उनकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए जनाब जो टी ट्री आजकल के दौर में बहुत, नीम जो है वो बहुत पुराना फार्मूला हो गया है, ठीक है जनाब, इस वक्त जो बहुत ज्यादा एक्नी के लिए इफेक्टिव है प्रोडक्ट वो गो पिंपल है, सॉरी टी ट्री है, यानी कि गो पिंपल है क्योंकि हमने टी ट्री, नीम और लेमन और हल्दी को एक साथ इसके अंदर शामिल किया गया है। ये मेडिकेटेड प्लस नेचुरल हमारा फेस वॉश है क्योंकि ये नियासिनमाइड प्लस सैलिसिलिक एसिड के साथ है। तो अगर आपको पिंपल्स का इशू है, आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, तो आपने गो पिंपल को चूज करना है, गो पिंपल लेना है अपने दानों को खत्म करने के लिए।

0: काड़ापन भगाए।
1: जी जनाब, चारकोल तीसरे नंबर का हमारा जो फेस वॉश है वो है चारकोल स्क्रब फेस वॉश। अच्छा, इसको हमने बड़ा इफेक्टिवली, ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है क्योंकि ये बहुत गहराई से सफाई करता है। जो कोयला होता है ना, ये कोयले से बना हुआ फेस वॉश है, कोयले से, चारकोल। ये अफ्रीका के जंगलों में जमीन के अंदर से जो कोयला निकलता है ना, वो वाला कोयला होता है। ये नहीं होता ये जो घरों में लकड़ियां जलाते हैं और टांग के लोग मुझे सुन रहे होंगे या डेरस मल खान की गिर्दनवा के जो कोयला बच जाता है, वो वाला कोयला नहीं होता। ये और चारकोल होता है जो जमीन के अंदर दफन रह रहकर फिर जो है वो कोयला बन जाता है किसी भी वजह से, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है फेस वॉश के अंदर। बेसिकली आपने अक्सर सुना होगा बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था दांत पीले होते तो कहते कोयला कूट कर हमें दिया जाता था और कहते थे दांतों के ऊपर लगाए तो व्हाइट हो जाते हैं। तो चारकोल बेसिकली सफाई के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए हमने चारकोल का व्हाइटनिंग फेस वॉश भी बनाया हुआ है। तो अगर आपको क्लिंजिंग का इश्यू है तो आप चारकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लवली भी व्हाइटनिंग के लिए है, चारकोल भी व्हाइटनिंग के लिए है, और एक और फेस वॉश हमारा जो कि है ग्लूटा फेस वॉश, वो भी व्हाइटनिंग के लिए है। तो जनाब ये चार फेस वॉश हैं और इन सब का बाप है जनाब अर्जेंट फेशियल केसर नेचुरल पाकिस्तान का, जिसका नाम है व्हाइटनिंग मैजिक। ठीक है जनाब, तो जो पांच किस्म के हमारे ये वेरिएंट हैं जो कि फेस वॉश ट्यूब की सूरत में आप लोगों के पास आते हैं, कीमतें मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो चारकोल फेस वॉश है ये आपको किस प्राइस के अंदर मिलेंगे। तो जनाब सुनिएगा, जो लवली फेस वॉश है वो 400 रुपए का आपको मिलता है, 100 ग्राम का है, टॉप क्वालिटी A1 क्वालिटी थाईलैंड फार्मुलेशन के, हमारे ये थाई फार्मुलेशन के साथ ये बने हुए फेस वॉश है और इनको जितना रगड़ते जाएं झाग खत्म नहीं होगी, आप खत्म हो जाएंगे, आपके हाथ जो है दुख जाएंगे मसाज करते करते, लेकिन झाग खत्म नहीं होगी। और यही एक अच्छे फेस वॉश की खूबी होती है कि आप जितना भी चेहरे के ऊपर मसाज करें झाग खत्म ना हो, जिस भी फेस वॉश की झाग आपके चेहरे के ऊपर खत्म हो जाती है वो हल्का फेस वॉश होता है, वो टॉप क्वालिटी का फेस वॉश नहीं होता है। तो 400 रुपए हमारे ईच फेस वॉश की प्राइस है। सिर्फ ग्लूटा वाइट का फेस वॉश जो है वो जनाब आपको मिलता है साढ़े चार सौ रुपए का, बाकी सारे के सारे फेस वॉश जो है आपको 400 रुपए में मिलते हैं।
0: चारकोल से गहरी सफाई, ग्लूटा वाइट संवलापन भगाए।
1: अच्छा जी, आप चाहे साबुन से चेहरा धोएं, चाहे मिल्की साबुन से धोएं, चाहे जाफरानी साबुन से धोएं, चाहे आप राइस साबुन से धोएं, चाहे उपटन से धोएं, चाहे आप कोजिक एसिड से धोएं, चाहे आप जो है हमारे गो पिंपल से धोएं, चाहे आप अपने चेहरे को लवली फेस वॉश से धोएं, चाहे आप अपने चेहरे को ग्लूटा वाइट फेस वॉश से धोएं, चाहे आप अपने चेहरे को गो पिंपल फेस वॉश से धोएं, या आप अपने चेहरे को ग्लूटा वाइट फेस वॉश से धोएं, इसके बाद का जो स्टेप है वो कभी मत भूलें और वो होता है स्किन टोनर का इस्तेमाल। और आप जब भी चेहरे को धोएं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपनी एक दफा आदत बना के देखिए, हम में से 90% लोग साबुन से चेहरा धोते हैं या फेस वॉश से धोते हैं, उसके बाद तौलिए से चेहरे को खुश करके निकल पड़ते हैं। यकीन जानिए, अगर जिस दिन से आपने ये काम शुरू कर दिया कि आपने साबुन के बाद जो है या फेस वॉश के बाद आपने स्किन टोनर को इस्तेमाल किया, तो आपको फायदे इसके नजर आएंगे, क्योंकि विटामिन सी होता है हमारे स्किन टोनर के अंदर। केसन ब्यूटी स्प्रे इसका नाम है, जो केसन का स्किन टोनर है उसका नाम है जनाब ब्यूटी स्प्रे। अरके गुलाब और विटामिन सी के साथ बना हुआ ये स्प्रे होता है, और जब भी आप चेहरे को धोएं, चाहे आप क्रीम लगाने वाले हैं साबुन से चेहरा धोने के बाद या फेस वॉश से धोने के बाद, तो उसके बाद क्रीम से पहले जब भी आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, आप एक दफा ट्राई करके देखिए। जब भी आप, अक्सर लोग जो है साबुन से मुंह धोने के बाद या फेस वॉश से मुंह धोने के बाद फौरन जो है क्रीम लगा लेते हैं, ये गलत तरीकाकार है, ये बिल्कुल गलत है। जब डायरेक्ट आप साबुन से धुले हुए चेहरे के ऊपर या फेस वॉश से धुले हुए चेहरे के ऊपर डायरेक्ट क्रीम लगाते हैं, बाज़ुकात फेस वॉश और सोप जो होते हैं इनका पीएच बहुत ज्यादा होता है और वो आपकी स्किन के पीएच को खराब कर देते हैं साबुन या फेस वॉश। तो जब आप डायरेक्ट क्रीम लगाते हैं तो वही क्रीम आपके चेहरे के ऊपर दाने लाने का सबब बनती है, रिजल्ट लेट आपको मिलता है। तो जब भी आप साबुन से चेहरा धोएं, फेस वॉश से धोएं, उसके बाद ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब, और उसको खुश करा ले, पानी होता है बेसिकली अर के गुलाब और विटामिन सी होता है। अब खुश्क होने के बाद जब आप इसी के ऊपर क्रीम लगाएंगे या इसी के ऊपर इसी चेहरे के ऊपर आप सीरम लगाएंगे तो आप यकीन जानिए आपको पहले से बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं और आपको जो फीलिंग आनी है चाहे आप क्रीम लगाएं या ना लगाएं चेहरा धोने के बाद ब्यूटी स्प्रे का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। केसन का ब्यूटी स्प्रे जिसे हम स्किन टोनर कहते हैं ब्यूटी स्प्रे कहते हैं आपको सिर्फ 200 रुपए का मिलता है। बाजार से खरीदिए और अपनी स्किन केयर रूटीन में इस एक स्टेप को शामिल कीजिए और फिर हमें बताइए कि इस एक स्टेप को शामिल करने के बाद आपकी स्किन रूटीन कितनी अच्छी हुई है।

सिरप। जी जनाब, सेहत के प्रोडक्ट हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, लोग बड़े खुश हैं हमारे इन प्रोडक्ट से कि जो भी अपनी बीमारी के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अगर आपको हाजमे का मसला है और बहुत लंबे अरसे से हाजमे का मसला है, अच्छा बाज़ुकात लोगों को जो हाजमे की तकलीफ होती है ना वो बहुत लंबे अरसे तक रहती है, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो हाजमा के मैदा के जो सिरप मिलते हैं वो बहुत महंगे हैं और लोग बेचारे गरीब खरीद नहीं पाते हैं। यही वजह है कि हमने आप लोगों के लिए ये बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। 150 रुपए का हमारा सिरप है, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, और ये आपको आपके जितने भी मसले हैं, ठीक है जनाब, आपके जितने भी मसले हैं और जो मैदे के मसाइल होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता है जनाब खाना खाने के बाद बदहजमी, खाना खाने के बाद आपके सीने के अंदर जलन शुरू हो जाती है। ये बेसिकली आपके सीने में बहुत ज्यादा आपको जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप जब खाना खाते हैं आपके मैदा जब हद से ज्यादा तेजाब बनाता है, तो ये मैदे की दीवारों का काम होता है तेजाब बनाना। आपने कभी खुद तो तेजाब नहीं पिया ना, ठीक है जनाब, आपका जिस्म खुद तेजाब बनाता है, ठीक है जनाब, आपका मैदा जो है मैदे की दीवारों से तेजाब निकलता है जो मैदे के अंदर गिरता है, और जो चीज हम खाते हैं जब वो मैदे में जाती है तो वही तेजाब जो होता है जो आपके मैदे से निकल रहा होता है वही उसी खुराक को हजम करता है, ठीक है जनाब, टुकड़ों में तकसीम करता है। जैसे जमीन के ऊपर आप लीमू डालें तो जमीन उबल पड़ती है ना, वो तेजाब होता है लीमू के अंदर भी, लेकिन उसी लीमू को हम शरबत बना के भी पीते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं, नुकसानदेह नहीं होता ना वो, ठीक है जनाब, लेकिन वो हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। तो वही तेजाब आपका मैदा जब हद से ज्यादा बनाना शुरू करता है तो आपके मैदे के अंदर तेजाब बढ़ जाता है। जब आप खाना खाते हैं, ठीक है जनाब, आपने एक पाव सोबत खाई, आपने आधा किलो चावल खाए या कुछ भी खाई, तो वो खाना जैसे ही आपके मैदे में जाता है वही तेजाब, चूंकि पहले मैदा खाली होता है तो तेजाब तो नीचे बैठा होता है ना, लेकिन जैसे आप पेट भर लेते हैं तो आपका मैदा खाने से भर जाता है और वही तेजाब आपकी खुराक की नाली को आ जाता है। तो वही खुराक की नाली को जब आपका तेजाब जो होता है ना मैदे के अंदर, वो जैसे आपकी खुराक की नाली को ऊपर आता है तो आपको सीने के अंदर जलन और दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मैदा तो खुद पैदा करता है तेजाब को, उसे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही तेजाब जब आप खुराक की नाली को आता है तो आप गोश्त है ना, सेंसिटिव है हिस्सा जहां से खुराक नीचे जाती है, तो वो खुराक की नाली जलन शुरू कर देती है और आपको ऐसा लगता है आपके सीने के अंदर क्या हो रहा है, जलन हो रही है। अब ये जो आप सिरप पीते हैं जैसे आपको जलन होती है, 2 मिनट के अंदर उसी तेजाबियत के असर को ये खत्म कर देता है, यानी कि आपके सीने के अंदर जलन हो रही है, तेजाब आपकी खुराक की नाली को ऊपर आया हुआ है, ठीक है जनाब, लेकिन जैसे आपको शदीद तकलीफ हो रही है, आपको सीना जलन हो रहा है, आप जैसे 2 चम्मच इसके पिएंगे ना आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने आग के ऊपर पानी डाल दिया। वो जो तेजाब आपकी खुराक की नाली को जला रहा होता है ना, जैसे ये सिरप उसके ऊपर गिरता है, 2 चम्मच 2 ढक्कन जैसे ही अंदर जाते हैं फौरी तौर पर तेजाबियत को खत्म कर देता है। तेजाब का जो असर होता है, जो जलन होती है हो रही होती तेजाब को, उसको हमारा सिरप बिल्कुल जाके खत्म कर देता है और 2 मिनट नहीं लगते, ठीक है जनाब, 2 मिनट भी नहीं लगते कि जैसे ये सिरप, बस इस सिरप ने आपकी खुराक की नाली में पहुंचना होता है, जैसे ये पहुंचेगा आपको ऐसे लगेगा जैसे जलती हुई आग के ऊपर किसी ने बर्फ डाल दी हो, किसी ने बाल्टी डाल दी हो पानी की, और आपकी तेजाबियत जो सीने की जलन है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। इस मसले के लिए आपको किसी डॉक्टर या किसी बड़े इसके पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि टीवी के ऊपर अक्सर इश्तेहारात सीने के जलन के जो है सिरप के चल रहे होते हैं, ठीक है ना, क्यों चल रहे होते हैं और दवाइयों के नहीं चल रहे होते? आपने कभी नहीं देखा कि शुगर के लिए ये गोली आ गई है आप अपनी तरफ से ले लें, आप कैंसर के लिए आ गई है ये अपनी तरफ से ले लें, या कोई और ब्लड प्रेशर की, आपने कभी टीवी के ऊपर इश्तेहार नहीं देखा होगा, लेकिन आप टीवी के ऊपर एक ही इश्तेहार देखते होंगे और वो इश्तेहार होता है मैदे के सिरप का, ठीक है जनाब, मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के इश्तेहार चल रहे होते हैं। वजह क्या होती है कि आप खुद से ये चीज खरीद सकते हैं, ठीक है जनाब, आप अगर आपको ये मसला दरपेश है, आपको गैस का मसला है, तेजाबियत का मसला है, तो आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं,
आप अपनी तरफ से अपना इलाज कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, आप उसको 1000 रुपए की फीस दें, आप पूरी जो है मजदूरी छोड़कर जाएं और एक सिरप या कुछ लेकर आ जाएं। तो ये जो मसला है, ये अगर आपको ये मसला है कि आपको खाना खाने के बाद गैस का मसला है, खाना खाने के बाद आपको तेजाबियत, सीने की जलन का मसला आपको हो जाता है, या फिर आपको कब्ज का मसला है, तो ये इतने बड़े मसले नहीं है। ये आप अपनी तरफ से भी कोई चीज खरीद कर, जिस तरह आप क्रीमें खरीदते हैं व्हाइटनिंग के लिए, हम आपको जो चीजें बताते हैं ना, वो आप जाके खरीद लेते हैं, तो इस हवाले से आप भी खरीद सकते हैं और खुद इस्तेमाल करें। यानी कि आप एक बोतल इस्तेमाल करेंगे ना जैसे, तो आपको एक दो दिन में फर्क पता चल जाएगा। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपका मसला मामूली सा था, वो इस सिरप ने खत्म कर दिया, आपको किसी मौलिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये हो जाए कि आप एक पूरी बोतल जो है इसकी खत्म कर जाएं, पूरी बोतल खत्म कर जाएं और आपको अफाका ना हो, तो फिर आपको डॉक्टर के पास या फिर मौलिज के पास आपको जाने की जरूरत होती है, फिर आप जाए। लेकिन इस तरह के इश्तेहारात जो चल रहे होते हैं टीवी के ऊपर, वजह यही होती है कि ये वाले प्रोडक्ट आप अपनी तरफ से खरीद सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाजमा कंट्रोल सिरप आपके शहर टांक और डेरा में हर जगह मौजूद है, 150 रुपए इसकी कीमत है। आपको भूख नहीं लगती है, भूख का मसला है, इस सिरप को इस्तेमाल कीजिए। बदहजमी का मसला है, इस सिरप को इस्तेमाल कीजिए। गैस का मसला है, इस सिरप को इस्तेमाल कीजिए। आपको हाजमा ठीक नहीं है, सीने के अंदर जलन होती है आपको, ठीक है जनाब, आपको उल्टी की कैफियत होती है, आपका दिल मतलाता है, मतली आपको होती है, उल्टी का सा आपको फील होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को घर

ये अभी भी नाराज है। कुछ लोगों की बातों की नाराजगी है, वो सिर्फ कहने से नहीं होता कि नाराजगी है, उनके अल्फाज भी बता रहे होते हैं कि वो आपसे नाराज है, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्यों का नाराज है। सलाम भाई, कब तक एफएम ऑन होगा पहाड़पुर वाला? जी जनाब, आपकी तरह हम भी मुंतजिर हैं और हम भी इंतजार में हैं कि पहाड़पुर का एफएम कब ऑन होता है। सारा गुल हमारे साथ मौजूद हैं, ग्लोबल एफएम 91 को सुन रही हैं, मंदरा कलां से हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं केसन जिंदाबाद। जी जनाब, सारा गुल जो है मंदरा में है और ये मंदरा में हमारे प्रोडक्ट अपने घर के अंदर भी सेल करती हैं, तो जो लोग इनको जानते हैं भाई जाके खरीदिएगा, केसन के सारे प्रोडक्ट इनके पास मौजूद रहते हैं। कैसे हो खलील भाई? मैं हूँ हमजा बलोच कुराई से। शो इज वेरी नाइस, सबको सलाम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, टांग के अंदर एक और हमारा सेल पॉइंट जो है वो ओपन हुआ है गरा बलोच के अंदर। एग्जैक्ट मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, गरा बलोच में जो यासीन वाला कब्रिस्तान है, टांग की बात कर रहा हूँ मैं, गरा बलोच के अंदर यासीन वाला जो कब्रिस्तान है वहां पर रमजान एंड इमरान जनरल स्टोर, ठीक है जनाब। तो जो लोग गरा बलोच के अंदर मुझे सुन रहे हैं, गरा बलोच के अंदर सुनने वाले लोग, ये यहाँ से यासीन वाले कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने आई थिंक बोर्ड भी लगा हुआ है रमजान एंड इमरान जनरल स्टोर, आप यहाँ से अभी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मंसूर जनरल स्टोर सदर सदाम प्लाजा कहाँ के अंदर, वहां से हासिल कर सकते हैं। वहीद जनरल स्टोर है जनाब, वहीद जनरल स्टोर टांक अलबदर मार्केट के सामने, यहाँ पर जाइएगा। इसके अलावा है जनाब मदीना जनरल स्टोर सदर प्लाजा की जो बेसमेंट है, तहखाना है, वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फहीम जनरल स्टोर है जनाब अलबदर मार्केट टांग के अंदर, और उसके बाद है जनाब गुलाम जान जनरल स्टोर ट्रैफिक पुलिस के सामने, आप यहां पर भी जा सकते हैं। सदर प्लाजा के अंदर मंसूर जनरल स्टोर, वहां पर भी आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जनाब आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जो कि है 03-44-936-33-66, 0344-936-3366। कुदरत की ताकत जो है वो जड़ी बूटियों में है, वो फूलों में है, वो पत्तों के अंदर है, वो बीजों के अंदर मौजूद है। और ये अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है इंसान के ऊपर कि वो कुदरत की ताकत को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करता है, कहाँ कहाँ से जमा करता है और लोगों को शिफा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो हम कहते हैं कि हम कुदरत के खजाने चोरी करके आप तक लाए हैं और उन्हीं खजानों में से एक बड़ा खजाना केसन की जोड़ी है।

0: जी जनाब, पहला प्यार हम इसको कहते हैं कि बच्चा, जैसे भी बच्चा हो या बच्ची हो, जैसे ही वो होश संभाले उसको केसन की मोहब्बत में गिरफ्तार कीजिए। केसन की हेयर केयर जोड़ी का इस्तेमाल उनके बालों के ऊपर कीजिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है और इनको मौका दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन है हमारे साथ जनाब, नाम बताएंगे अपना?
1: यूनुस अरमानी।
0: यूनुस अरमानी टांग से बात कर रहे हैं, डबरा से या फिर किसी गरे से बात कर रहे हैं?
1: टांग से।
0: टांग शहर से बात कर रहे हैं?
1: जी।
0: यूनुस भाई कैसे हैं? दुकान है आपकी या ऐसे ही शोल करने वाले बंदे हैं, ऐसे जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, या कोई काम कार भी करते हैं?
1: जी हाँ।
0: क्या करते हैं भाई? रक्षा चलाते हैं। तो टांग के अंदर चिंची हैं आजकल या पुराने रक्षे हैं वो वाले?
1: नहीं है, चिंची है।
0: तो आप रक्षा चलाते हैं या चिंची चलाते हैं?
1: रक्षा।
0: अच्छा, रक्षा चलाते हैं। तो प्रोग्राम आपका एफएम आपके रक्षे में लगा होता है या मोबाइल से सुन रहे होते हैं?
1: हाँ, मोबाइल पे।
0: अच्छा, मोबाइल पर सुनते हैं। तो यूनुस भाई क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम में आपने कॉल की है, कुछ सोच कर कॉल की होगी आपने। हेलो। आगे जनाब कॉल कट गई। आई नर्वस हो जाते हैं बंदे ना, नए नए लोग जो होते हैं ना, वो फिर शो में जब आते हैं तो वो फिर परेशान भी थोड़े से हो जाते हैं कि भाई कौन सी बात करनी है। तो भाई भी परेशान हो गए। डेरस मिलखान में आप लोग हमें सुन रहे हैं जनाब, और आप भी अपने बच्चों की पहली मोहब्बत केसन हेयर

0: बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास एक जिंदा सबूत है कि ये जब बचपन से ही इसको शुरू किया जाए इस ऑयल को, तो इसके रिजल्ट कितने खूबसूरत होते हैं बालों की सूरत में। हमारे साथ सोनिया अवान आप ही आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई?
0: आप भी, आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
1: शुक्रिया सर, ठीक है।
0: 91 सही चल रहा है आपकी तरफ?
1: जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस दो तीन दिन काल नहीं मिली।
0: अच्छा,
1: बहुत काल के कुछ टाइम दे।
0: आप तो तीन चार साल से हमारे साथ हैं ना, वो तो नए नए लोग हैं, तो उनको ज्यादा दिल करता है हमसे बात करने,
1: उनकी जरूरत भी है और वो एक मालूमात भी उन्हें चाहिए ना।
0: हाँ, नई चीजें ना, तो वो तसल्ली भी चाह रहे होते हैं और मोहब्बत भी कर रहे हैं केसन के साथ, डेरा वालों के। हम पल्ला हो गए टांक वाले लोग, बताओ आप लोग।
1: हाँ बिल्कुल, वो हमसे जीत जाएंगे इंशाल्लाह।
0: जोश खरोश तरीके से केसन को इस्तेमाल कर रहे हैं ना टांग के लोग, तो बहुत जल्दी आपसे निकल जाएंगे,
1: भी अच्छे मिलेंगे और उन्हें फायदा भी होगा।
0: हाँ, फायदा हो रहा है, तो देखो ना, आप चीजें मिल नहीं रही, लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन लोगों को चीजें वहाँ पर नहीं मिल रही हमारी।
1: साबन जैसे मेरा बेटा ना, ये मिट्टी सोप के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता,
0: कोई भी नहीं करता
1: घर में ना, जी वो दूसरा साबन इस्तेमाल नहीं करता।
0: अच्छा, क्या कहते हैं दूसरा की कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो फिर क्या कहते हैं?
1: होता है वो, कहते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: हाँ अच्छा, यही होता है कि उससे चेहरा खुश्क हो जाता है, स्किन अकड़ जाती है उसको ना।
1: ये जब सर्दी आएंगी तो ज्यादा, जिन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया जब इस्तेमाल करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि ये क्या है।
0: हाँ, सर्दी में असल हमारे साबन का असल पता सर्दी में लोगों को पता चलता है कि दूसरा साबन तो बिल्कुल चेहरा खुश कर देता है, सख्त कर देता है, और हमारे साबन जो है वो बिल्कुल चेहरे को नर्म और मुलायम रखते हैं।
1: और सब सुनने वालों को सलाम, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप जो शुरू में बातें बताते हैं वो बड़ी काम की होती है, पल्लू से बांधने वाली होती है।
0: तो आपका पल्लू तो भर गया होगा?
1: नहीं, मजीद भी भरना चाहिए, क्योंकि आप जो बात बताते हैं, जैसे पिछले दिन में आपने बताया तो उसी मेरी कॉल नहीं मिली थी कि हम ना जो चीज देते हैं तो पुरानी देते हैं, जो खाना देते हैं तो बासी, तो वो एक जमीर को झिझोड़ने वाली है और हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीखना चाहिए।
0: ऐसा है बिल्कुल, वो एक इसके हवाले से
1: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
0: और हम ये सोचते हैं कि भाई सवाब भी मिलेगा, साथ में पुरानी बची कुची चीज दे रहे होते हैं जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है, और फिर कहते हैं कि यार गरीब को दे दो सवाब होगा।
1: जी फिर क्योंकि आप जब ये जमीर को झिझोड़ते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा ना जो होता है तो फायदा हो जाता है।
0: अच्छी बात है, आप पहले मैंने खुद अपने जमीर को झिझोड़ा होता है, इस तरीके से फिर आपका झिझोड़ा।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे हम तकलीफ में जाए या कहीं जाए बयान पे, तो वो लोग सुनते हैं तो असर तो होता है, क्यों नहीं होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जनाब, बहुत सारे लोग।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें बुराई से ना अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं।
0: वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, हमारे लिए भी दुआ किया कीजिए।
1: जी बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ है, आपको मजीद कामयाबियां दी, आपकी जिंदगी बरकत।
0: आमीन आमीन।
1: सब सुनने वाले को दूरदर्शन, सब सुनने वाले लड़कियों को, सब सुनने वाले
0: Okay, बहुत शुक्रिया जी। सोनिया अवान आप ही हमारे साथ मौजूद थे और फिर इस्माइल खान से हमारे साथ होती हूँ, कहती हूँ कि तीन चार दिन से मैं कॉल मिला रही थी, लेकिन टांक वाले भाइयों को ज्यादा जरूरत है केसन के साथ बात करने की, क्योंकि वो नए नए लोग हैं। लेकिन टांक वालों, आप यकीन कीजिए कि मैं कहता हूँ कि उन लोगों की आंखें खुल चुकी होंगी जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए होंगे। आने वाले दिनों में हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं, अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए, और बहुत प्यारी प्यारी प्रोडक्ट आपको हम इसी महीने के अंदर, भरपूर कोशिश है कि 20 तारीख के बाद हम आप लोगों के लिए लॉन्च कर दें, और वो आपकी वो भी चीजें वो ब्यूटी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, जो हम आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो इसी महीने के अंदर प्रोवाइड करने लगे हैं। ठीक है जनाब, और जैसे क्योंकि मैं जब नाम ले लेता हूँ, मैं अभी मुझे उन प्रोडक्ट्स के नाम भी आ गए हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स के हमने नाम भी रख दिए हैं। ठीक है जनाब, उनकी पैकेजिंग भी रेडी तकरीबन होने वाली है, लेकिन मैं जब नाम ले लेता हूँ तो लोग दूसरे दिन चल पड़ते हैं बाजार लेने के लिए, वो बाजार में चीज आई नहीं होती, लोग ये समझते हैं कि ये आ गई है, तो फिर वो हमारे लिए भी परेशानी और दुकानदारों के लिए भी परेशानी है, फिर बार बार हमें कॉलें आती हैं, क्योंकि मैं अगर अभी उस प्रोडक्ट का नाम उठा दूं कि ये हम लेके आ रहे हैं और उसका ये नाम है, तो लोग कल पैसे उठा के बाजार चले जाएंगे, मुझे पता है, और फिर उनका जाना भी जाया हो जाएगा और वो चीज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी चीज जो है उसमें अभी टाइम है। जी हमारे साथ शबीर उस्ताद के से आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
2: बस टाइम ही थोड़ा है
0: जी, सही ठीक ठाक
2: اللہ دی مہربانی شکر پروگرام سن کے کال نہیں لگ دی چلو رسا کے تا کالے تے کئی دی تے سارے برا دے رواڑی انہاں دا حق بن جائے
0: سارے پاسے اون میں ایف ایم اج کل کوئی صحیح شودے بنے پے تے سان کے لہن سے
2: بس اسا تا بھائی سارے مارے تے ہک شے اسا تا کوئی سکو اے تے نار لے ٹاور تے چنڈا کوسی نہ اسا تے کوئی چھوڑ تے جاتا ہر حالت یاد رہی رہے
0: مفتا ان سے تواڈے مفتا نو تواڈے بھائی جان او جڑے دوست سن سارے ادے تے کرن آئے انہاں دا ختم گرسل خادم فاروقی بھائی پروڈکٹ جناب سب سننے والوں کو ان کی طرف سے سلام ہو گیا اور کیسن جوڑی اپنے بچوں کی پہلی محبت بنائی ہے کیسن کو کیسن کا ہیئر آئل جیسے ہی وہ دو ماہ کے ہوں ان کو کیسن ہیئر آئل استعمال کیجئے اور پھر دیکھیے کہ جو بچہ بچپن سے یہ آئل استعمال کرتا ہے اس کی مثال میرے بیٹے کی موجود ہے ٹھیک ہے جناب شاہزین میرے بیٹے کی اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بال کیا ہوتے ہیں بالوں کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کیا بچپن سے ہی اس کو استعمال کرایا گیا ہے تو اپنے بچوں کی پہلی محبت کیسن کو بنائیے اور کیسن ہیئر آئل دو ماہ کے بعد استعمال شروع کیجئے اور پھر دیکھیں کہ بال بچیوں کے کتنے گھنے کتنے خوبصورت کتنے چمکدار اور کتنی
3: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Your music, your request. This is Radio Station, Radio Aman.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
5: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404

पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: इसका इलाज है और देसी इलाज में है।
1: अच्छा, ऐसा है कि अभी ये जिस भाई ने कॉल की थी गड़ाकोड़ू खान से, है कि इनसे बेहतर ये है कि ये इनका जो पेशेंट है
0: जी जी
1: उसको भी साथ लें, क्योंकि जब आप नजरी बदनी मुआयना करेंगे, आप देखेंगे उसकी हालत, देखेंगे जो अगर इनके पास रिपोर्ट्स हैं आप वो देखेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इसका इलाज देसी तरीका इलाज में मौजूद है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, अगर वो मरीज लाते हैं तो सबसे ये तो बहुत अच्छी बात है ना,
1: ठीक है,
0: अगर उनकी जबानी बताना, मरीज को खुद अपनी नजरों से देखना,
1: ऐसी बात है,
0: उसमें बड़ा वाजिया फर्क है। जब मरीज आएगा उसके बच्चे की हालत देखनी है, उसके अलावा दीगर जो सिम्टम्स हैं अलामतें हैं वो भी नोट करनी है, तो उसका इलाज इंशाल्लाह हो सकता है, बच्चा परेशानी से निकल सकता है।
1: चले ठीक है, सो बिल्कुल जनाब, जेरे भिरा कॉल की है जेडे तेरे घर दे विच मरीज है पी अमरीकी दा, चाहे कोई भी मरीज है कुसनु दा पेजे को मिर्गी दा मसला होवे, सरी कोई भीण को होवे, कोई भिरा को होवे, कोई भणीजे को भतरीजे को मसला होवे पिया, तो बिल्कुल जनाब देखो हर बीमारी दा इलाज मौजूद होंदा पिया है। अल्लाह ताला ने अगर एक बीमारी दिती है तो आपको तो इंशाल्लाह यकीन रखो उस दा इलाज ही मौजूद है पिया। अगर तुआको कोई मसला है इवें मिर्गी जिमें भिरा कॉल की थी, ता भिरा खान इवें करो तुसा जड़ा है कल हकीम साहब दुगिन आनो, अपने भिरा को तुहाडा रिश्तेदार है जड़ा भी है जरा मिर्गी का मरीज है, तुसा लई पे बहु पेचीदा हालात इस, ता कोशिश करो भाई उकू जड़ा है तुसा कल गिन आनो अलशिफा दवाखाना ते, ठीक है जनाब, अलशिफा दवाखाना जिमें तुसा टांग खिचा सो ट्रैफिक चौक कुल थोड़ा अगू शवाल मार्केट का पता करे सो, ते शवाल मार्केट दे बिल्कुल आखिर दोते हकीम साहब बने दवाखाना है अलशिफा दवाखाना, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। मजीद तफसीलात मालूमात दे वस्ते ते अपना एडवांस नंबर बुक करने वस्ते नंबर नोट फरमा गिनसो, प्रोग्राम दे बाद इस नंबर ते हकीम साहब नाल राबता कर सकदे वे 0319-55-23-404 दोते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहां से मेरे भाई?
2: मैं टांग से बात कर रहा हूं
1: जी, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: मेरी उम्र तकरीबन 18 साल है और थोड़ी शुगर की शिकायत है।
1: ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका इलाज भी मौजूद है अलशिफा दवाखाना पर, और आपकी उम्र भी बहुत कम है मेरे भाई, रेडियो आप सुनते रहे हकीम साहब से मशवरा लेते हैं जी। हकीम साहब बताइएगा, 18 साल उम्र है भाई की और एक साल से शुगर का मसला है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, छोटी उम्र में भी हो सकती है, ऐसे भी देखे हैं जो पैदाइशी बच्चे हैं
1: ऐसी बात,
0: उनको भी शुगर हो जाती है वालदेन की तरफ से, लेकिन चीज ये है कि आप डायबिटीज पेशेंट हैं,
1: ठीक है,
0: तो आपको थोड़ी सी एहतियात भी रखनी है, और दूसरा यह है कि अपने इलाज की तरफ तवज्जो भी करनी है।
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: तो आपने अपनी जो शुगर फास्टिंग में या रैंडम में जब आप चेक करवाते हैं,
1: ठीक है,
0: वो करवा के तो आप रिपोर्ट्स जो हैं अगर वो साथ लेके तो कोशिश करें कि दवाखाने पे एक दफा मुझे मिले। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मैं रोजाना होता हूँ, उसमें यह है कि एक तो आपकी रिपोर्ट सामने होगी, आप खुद सामने होंगे तो मुझे बेहतर हो जाएगा, और इसके अलावा फिर आपके मैदे की क्या पोजीशन है, आपके असाब की, आपके पट्ठों की क्या पोजीशन है, कमजोरी कितनी हो रही है आप में, ये सारी चीजें नोट करके और फिर आपको मैं बेहतर मशवरा और फिर उसका बेहतर इलाज भी बता सकता
1: हूं। ठीक है, एक मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे कहते हैं कि भूख नहीं लगती, सारा दिन मैं बकरियों के साथ फिरता रहता हूं। हकीम साहब अनस भाई हकीम साहब से पूछें, खालिद गंडापुर कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज बताएं।
0: इसका इलाज बिल्कुल है, और इसका इलाज दवाई की सूरत में है, और दवाई जो है उसके लिए आपको दवाखाने पे आना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा ताकि वजूहात पता चल सके कि आपकी भूख क्यों खत्म हो रही है। और दूसरा यह है कि टोटकों से या नुस्खों से आप वक्ती तौर पे तो आप अपनी भूख बेहतर कर लेते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन प्रॉपर उसका इलाज नहीं हो पाता, जो फिर कुछ अरसे बाद फिर आप महसूस करता है कि मुझे ज्यादा तकलीफ है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इधर अगर शवाल मार्केट की तरफ आपको चक्कर लगे तो आप गुजरते हुए भी मशवरा करते जाए, हो सकता है आपके फायदे के लिए हो।
1: चले ठीक है, एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, मैं असमत अमान गांव कड़ू खान से आपको और मोहतरम हकीम साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं एक कॉल दरमियान में आ गई, सो कहते हैं कि अनस भाई ये जो पीला यरकान है ये अब खत्म हो गया है तकरीबन 20

0: 20 साल का बच्चा है, इसका परहेज बताएं।
1: परहेज तो है लाजमी बात है, मिर्च मसाले और ऐसी चीजें जो कि चिकनाई वाली हों, और गरम, वो उससे जरा एहतियात रखनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि इसको जरा ठंडी, जैसे खीरा हो गया, कद्दू का सूप हो गया, या मीठे हो गए, या आप गंडेरियां ले लें, या फिर आप ये अनानास भी ले सकते हैं, या सॉरी पाइनएप्पल जो है,
0: है। हाँ, अनानास
1: नहीं,
0: पाइनएप्पल नाशपाती, पाइनएप्पल के बारे में कह रहे हैं,
1: वो मैदे के लिए इस्तेमाल होता है।
0: हाँ जी,
1: और
0: कोई फ्रूट है, क्या
1: फ्रूट है, और
0: चले
1: पपीता,
0: पपीता,
1: पपीते का रस आप इनको इस्तेमाल करा सकते हैं, तो जो थोड़ी बहुत ही उसमें कसर रह भी गई होगी, तो इंशाल्लाह ये पपीते के रस से वो दूर हो जाए।
0: चले ठीक है, एक और मैसेज है कि मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, मुझे सफर में उल्टी आती है, इसके लिए कोई नुस्खा बताएं। जी हकीम साहब, कोई नुस्खा बताएं आप
1: इसके लिए। फिर यह है कि आप अनारदाना जो है, ये भी इसके लिए बड़ा कारगर होता है। आप अनारदाना के पास खुशक अनारदाना रख सकते हैं, और थोड़े से दाने उसके मुंह में डाल के आप उसको चूस सकते हैं। उससे यह है कि आपकी कैफियत ऐसी नहीं होगी कि वो वॉमिटिंग वाली हो, और आपका सफर बेहतर हो जाएगा। कुछ लोगों को होती है एलर्जी, कुछ सफर करें तो वो दिल मतली करता है,
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: इसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आप कोई भी खट्टी मीठी गोली।
0: ठीक है, अच्छा हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, कॉल्स भी बहुत सारी आ रही हैं, एसएमएस भी आज कुछ रह गए हैं, सो आखिर में क्या कहना चाहेंगे?
1: आखिर में बस यही कहना है कि आप अपनी तरफ थोड़ी तवज्जो दें।
0: हाँ जी,
1: अपने लिए वक्त निकालें और कोशिश करें कि अपने आप को, अपने वजूद को साफ सुथरा रखें।
0: ऐसी बात है,
1: और कुदरत के नजदीक होने की कोशिश करें। जब आप कुदरत के नजदीक होते हैं, और उससे उसके लिए बेहतर जो है वो है नमाज।
0: नमाज
1: जब आप नमाज की तरफ रजू करते हैं, या आप खुदा के बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यकीन है कि आपके मर्ज में कोई वजह नहीं कि वो मर्ज रह जाए।
0: ऐसी बात है कि सब इंशाल्लाह आप कल मौजूद होंगे।
1: इंशाल्लाह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मैं अपने मतलब पे मौजूद हूँ।
0: चले ठीक है, बहुत मेहरबानी है। तो बिल्कुल खवातीनों हज़रात, आप लोगों ने गुफ्तगू समाअत फरमाई देसी तरीका इलाज के माहिर हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जिन्होंने आज बहुत मुफीद बातें की। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके लिए बहुत फायदा मंद होंगी। सो आपका कोई भी मसला है, जिस बीमारी से में भी आप मुबतला हैं, इंशाल्लाह रोजाना हकीम सब अपने क्लिनिक पर मौजूद होते हैं, कल भी मौजूद होंगे, और हफ्ते के 7 दिन क्लिनिक खुला होता है। आप सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक आ सकते हैं अलशिफा दवाखाना में, और अपना इलाज करा सकते हैं। समीन इकराम, देसी तरह का इलाज जिसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और एक ऐसे हकीम, ऐसे तजर्बाकार हकीम जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है, आपके शहर टांग में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आए हकीम साहब से इलाज कराएं। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, और आपको बहुत ही बेहतरीन और इंशाल्लाह मौसर इलाज मिलेगा। देसी और हर्बल तरीका इलाज से हमेशा ही की ना याद रखे सो अलशिफा दवाखाना। बिल्कुल जनाब, देसी और हर्बल तरीका इलाज के लिए हमेशा एक ही नाम याद रखना है, अलशिफा दवाखाना। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट फरमाइए, 0319-55-23-404 पर आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से राबता कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह कल सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना खुला होगा, और रोजाना खुला रहता है। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चाहता है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर होगी मुलाकात इसी टाइम पर, इसी स्टेशन पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिये। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, एंड अस्सलाम वालेकुम।

मैं हूँ आसमानूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

मौलाना अब्दुल खालिक साहब मात मैसेज कई वही से माशाल्लाह प्रोग्राम बिल्कुल सही से उस पर आजा दे सरा सरा ना देर पक्का बच्चे गोरी वाले वाले हम मात मैसेज कई वही से माशाल्लाह प्रोग्राम बिल्कुल सही था।